अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा। सात संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां अठारह सिद्धियां दे दी। चौथे प्रमाण विच

तन्ने ने पत्थर जान के नहीं पूजिया, तन्ने ने ता ठाकुर जान के पूजिया, और फिर भगवान नू उस पत्थर विचो तन्ने नू ठाकुर होके दर्शन देने पे साथ से।

श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उन्हां दी रसना चों निकलिया होया महान फैसला साच कहूं सुन लेओ सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सेवा ते सिमरन दो चीजां ने। दास बैठा बैठा कीर्तन करदे ही सोच रहा सी जो सिमरन है उनू गाउणा ते उनू सुनना इहदे बारे भी मेरे पातशाह दा फैसला है। गावीए सुनीए मन रखिए भाओ तेरे अंदर भाव होवे तेरे गाउण ते सुनन विच प्रेम भाव होवे फिर दुख पर हर सुख कर लै जाए भाव होवे। जे सेवा नूं लै लईए ते तां वी महाराज जी दा फुरमान है सतगुरु की सेवा सफल है शर्त जे को करे चित लाए। इहदे च वी चित लगा प्रेम होवे फिर आ कृपा वरसदी है मन चिंदिया फल पावना ते होमे विच्छों जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सेवा बारे भी सिमरन बारे भी सतगुरु जी दे फैसले इहदे विच प्रेम होवे। चार तरह दे जीव धरती ते वसदे ने। वीरवार दे सत्संग विच रूटीन विच आए हो गुरु नानक पातशाह दी दुकान दे उत्तों जिथे जिथे जगह मिले बैठ के सौदा खरीदना जरूर मन दी पत्री फरोलनी के इना चारां विच्चों असी किथे पहुंचे हां। चार तरह दे जीव ने धरती ते एक है मिल क्लास एक थर्ड क्लास एक मध्यम क्लास एक उत्तम क्लास। एक मिल एक थर्ड एक मध्यम एक उत्तम। मिल कौन ने जिन्हां नूं बिल्कुल रब वाले पासे दी ना लगन है ना ज्ञान है बिल्कुल मिल है ही नहीं किसे खाते च। ओ जीव खाली आउंदे ने खाली चले जांदे ने। थोड़ा जा नक्शा वेखना होवे ते नील क्लास वालियां दा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे भोरियां च बैठ के बंदगी करन वाले चित आया ते दुनिया नूं तारन लई भी निकले ने। एक पंधेरी नगर है सतगुरु महाराज दे सिखां ने जदों उत्थों दे प्रबंधकां नूं सुनिया दित्ता वी नौवें पातशाह आए ने गुरु नानक दी जोत उहनां ने हल्के लफज बोले
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ

आगम आगोचर अत वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्हों कोई तोड़ नहीं सकता ओदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता।

कीमत की नहीं ना पाई है। उस परमेश्वर की कीमत कोई नहीं पा सकता, ते ना ही पैसों के नाल ओ राम किधरों मिलता है। गुरु साहब ने कहा जो कोई इंसान ये कहे कि पैसों के नाल मैं रब न पा लवांगा, साहब जी कहते नहीं कीमत दे नाल ओ नहीं मिलता।

राम खिलौना जाना लोका ने राम नु खिडौना समझ ले। कोई बच्चा रुस जाए मिठिया मिठिया गल्ला करके बच्चे नु मना लेने। ऐसे तरह लोग रब नु समझदे ने। जो मर्जी करी जाओ जिन्ने मर्जी पाप करो झूठ बोलो बस थोड़ी देर राम राम कर लांगे वाहिगुरु कर लवांगे ते बस साडे पाप खत्म। पर कबीर साहब कहंदे ने नहीं ओ राम कोई खलौना नहीं बच्चा नहीं जेड़ियां तुहाडियां

जद तक मनो नहीं कहते। एक दुध वेचन वाली गुजरी नदी पार करके एक पिंड दुध वेचन आया करती सी। एक दिन वो दुध वेच के जदों वापस तुरन लगी ता मंदिर दे विच बहुत सारे लोग बैठे सन ते कथा हो रही सी। मंदिर दा पुजारी कथा कर रहा है कि जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। उस गुजरी ने कथा सुनी, मन विच ये गल वस गई कि जेड़ा राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। ए गुजरी कथा सुन के अपने घर नूं वापस मुड़ी, जदू नदी पार करन लगी

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा ए ता छोटी जी नदी है जिस संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदी मन विच भरोसा राम ते बजदी राम राम करदी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदे देखदे आराम आराम कहंदे आ ए नदी पार कर गई हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लेंदी एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लेनी है पानी उत्ते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उत्ते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राम मैनू मंदिर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नू घर बुला के ओनू रोटी खुआवा प्रशादा छकावा ओदी सेवा करा गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसी तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नू पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे तुरदे तुरदे जद नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नू के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावा पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जावा गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पीछे पीछे आओ तुसी ते कदू दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां ए कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उते पानी दे उते तुरन लग पई ए देख के राम राम कहंदे पिछे पिछे पंडित जी भी तुर पे जदों थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे

लोग कहते ने कबीर बौरा है ए कबीर बौरा है ए पागल हो गया, पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब लो, मैनू कोई बौराना कब लो, मैनू कोई फर्क नहीं क्योंकि मेरे मन का दर्द मेरा प्यार मेरा आराम जानता है, मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

कसुंबे का रंग कच्चा कपड़े नु रंग चाड़ो धोवो सारा रंग उतर जाता। इस तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नु वखरा वखरा करके समझदे ने समझो कि उन्हां उते राम दा अल्लाह दा वाहिगुरु दा रंग चढ़े।

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा। साहब जी कहंदे ने सिख किवें हो सकदा, ते रहत तो बिना ओ चोटा खावेगा दुखी।

फरमावे मैं चुपे पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने ओनू राम ओनू वाहिगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदा पर सारिया नू

जो बला वह तुम बोलह स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहार कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आपले हो तुम कथा सुधारी जस करो वाहिगुरु दा प्यारे चितनु एकाग

0: सतगुरु युग युग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह दी जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र गोद विच दूरों नेड़ों चल के जिन्हें भी माई पाई सतसंगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाने के लिए गुरु दरबार हो बड़भागे हो आओ अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करो अपनी सुरती अखा बाहर जाने तो रोको इधर उधर वेखन की कोशिश ना करो गुरु स्वरूप का ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग का पूरा लाभ ता ही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि यह सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन तां इक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द दे नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन च जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हन क्योंकि सेवक उही हुंदा है सतसंगी उही हुंदा है जेड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन नूं अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: सो ये साढ़े चंगे भागां दी निशानी है कलयुग दा बड़ा भयानक समा है ऐसे समें दे गुरु दी शरण मिल जानी सतसंगत मिल जानी अच्छा करके निश्चय करके ये साढ़े चंगे भागां दी निशानी है सो कदम सफल कीते ने गुरु वल चल के नेत्र सफल कीते ने दर्शन करके सीस सफल कीता नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल कराया करो गज बज के तिना हिस्सों के बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति रुक जाए, किस तरीके दे नाल ए मन जिहड़ा दशा दे समझ भज्जिया फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्तां पिआं भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पा के भी टिकदा नहीं है। कबू जिगेड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थिर न रहता है, चारे कुंटा
1: भाले,
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे, केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे हन भाई असीं विछड़े हुए हाँ भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है, जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनू दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावे मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन दे नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ ते फिर कुछ चिर वास्ते मन तृप्त हो जाएगा, सदी भी तृप्ति नहीं है। आत्मक शांति जिहड़ी है, जो परमेश्वर दे नाल जुड़िया सत्संग सेवा सिमरन दे नाल मिलदी है, उही सदीवी शांति है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उही सदीवी शांति है जो आके जांदी नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो उस नूं आत्मक शांति कहिंदे हां। सो नहीं तां गुरबाणी दे विच गुरदेव बहुत प्रमाण दे दे के खोल खोल के समझाते हैं। मैं तू बाकी छोटे मोटे की गल्ला छड़ दे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जावे हे मनुख, सारी सृष्टि का। बाकी माड़ी मोटी गल छोड़ो, छोटा मोटा कोई अपना बन जाना, कोई अहुदा मिल जाना, कोई इलाके का मालक बन जाना, कोई होर कुछ माड़ा मोटा ज्यादा कुछ बन जाना, सारी सृष्टि का राजा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं भाई, जेकर वह रब दे नाल नहीं जुड़िया, जेकर वह परमात्मा का नाम नहीं जपता, जेकर वह उस दाते नूं भुल गया है, फिर उसकी सारी सृष्टि की, सृष्टि के मालक की हालत की है,

0: सगल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी के में होएगा पाए। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर का नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत संगत, हुण फिर असीं सोचदे हां भी नाम जपना कि सानू नाम जपन नाल ही सुख मिल सकता है। फिर बड़ा औखा है नाम जपना, दुनिया छड़नी पवेगी, संसार दा त्याग करना पवेगा। हां संसार दा त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां दा कारण है, सारे दुखां दा कारण मोह है, सारे दुखां दा कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं किथे जावांगे, नहीं। गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, जोगियां ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे साध संगत उन्हां दी कन्ना पाड़ के मुंदरा पवा दतिया, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जोग दे नाल भी जोग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहा, बड़ी आरजा फिर जन्म हर सिंह संग ना
1: गहया,
0: तीर्थां दे बैठ गए, वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़ी तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना, पाठ परिवार वेद विचारियो निमर पहंगम साधे, पंच जना सिंह संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिल ना जाई, मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेकों ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध
1: विवेका,
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत न होया। बोलो
1: सतनाम
0: पार्थरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने जोग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई, अजे भी कहते हैं हे नारद

0: हे नाथ, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनों एक तरीका दस दिंदा हाँ, रास्ता दस दिंदा हाँ। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाने की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उत्थे तेनू शांति मिलू, तेनू सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनू कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हां दा कोई चक्कर चिन्ह दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा होए ने ओह। श्री दशमेश मांगू, मैनू दसो, मैं उन्हां दा दर्शन किवें करांगा, मैं उन्हां नू किवें मिलांगा, मैं किवें उन्हां दी शरण विच जावां। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्हां नू अराद याद कर, बेनतियां कर, अरदासा कर, तेनू आपे ही मिल जाणगे। आके बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु हुंदा है, उस नू गुरु खुद ही ढूंढ लैंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा अधिकारी नहीं हुंदा, उहनू दर ते आए नू भी कई बार मोड़ दिंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अण अधिकारी नू तू याद कर, बेनतियां कर। सो वक्त आया, समा आया, ओही पार्थर। और बहुत सारे जोगी गुरु नानक नाल चर्चा को चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, परंतु पार्थरी सवाल जवाब नहीं करता है, बोलो
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया की आदत है, सलाम जवाब दो बैं करे, मुंडो कोथा जाए, ना ही मत्था टेकदा है, ना ही शंके करदा, ना ही सवाल जवाब करदा है, दोवें ही काम करदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ना ही सेवक, ना ही शंका। सो सत संगत पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं पुछया। बाकी जोगी परीक्षा लेंदे ने अपने होमें दे विच आके, कई तरह दियां रिद्धियां सिद्धियां बखाउंदे ने गुरु नानक नूं, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां नूं प्रभावित करन दी कोशिश करदे ने, गुरु नानक साडे जोग दे विच आ जाए, किन्ना जोग फैल जाएगा, साडा मत फैल जाएगा। पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, क्यों? क्योंकि पार्थरी नूं इशारा हो चुका सी, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: पहला जोगी सी पार्थरी जिहड़ा गुरु नानक दी शरण विच पिया, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे दे रूप दे विच देवी दे चाले जांदे हन, संग लैके जांदे हन। चोजी प्रीतम, रस्ते विच की सुनिया गुरु नानक दी महिमा, क्योंकि ये दर ऐसा है भाई,

तेज बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे अनन प्यारे सिख कथन करदे ने, अगर तेरा दिल पवित्र है ते वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तेरे अंदर वसदा, ते जे तेरे नेत्र साफ हन उन्हां विच ज्ञान दी दृष्टि है, मंदर वल वेख, मस्जिद वल देख, चर्च वल देख, इमाम शाफे वल देख, सारे जगह ते तैनू ओ व्यापक मौजूद नजरी आएगा, क्योंकि सारा संसार एक दी उपज है, एक माता पिता दी होंद है।